जगत सजा प्रथम संसार। एक रूप वन उप स्वरूपा रंक भयो राव कई भूपा अंडज चेरज से तज कीने उत भुज खान बहोर रच दीने। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं समट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाय अचंपव आद जुगाद स्वरूप से अंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार्य सिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे आस तो जताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे। जो काल को एक बार त्याए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट वरिष्ठ ट्रै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय निहरि हो ताके ताप तनक मोह हरे हो।

बाराम। जिन नर नाम तिहारू कहा, दर दुष्ट दुख ते रहा, खड़क केत में शरण तिहारी, आप हां दे ले उबारी। सरब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लियो बचाई, सवैया।

एक न माने हो। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जाने हो। श्री सपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तोय बखाने हो। दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सत गुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सत गुरु मैं पाया सत गुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वा धन्या राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सत गुरु मैं पाया।

सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जपौ हर रंगे पार धन दुख किश पाप न फेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े तृष्णा अगन प्रवे आप बुझाई नानक उधरे प्रभ शरणाए तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उधरे प्रभ शरणाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों वड़ पा गए जिथे आप जिया ने संध्या समय नूं मुख रखदे आ शब्द चौंकी उपरंत सोधार रहिरास साहिब जी दी पावन बाणी दे पाठ श्रवण कीते ने। सरबत दे भले दी अरदास तों उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक दी दात बख्शिश कीती है पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित श्रवण कीते हन। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन दा सेवन बन के सत्कारयोग भाई हरमनदीप सिंह जी हजूरी रागी जथा सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर वाले औतना पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन श्रवण करिए जी। भुला चुकां दी खिमा आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक बंदा सह सहज ना चलिया, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे दत्त ना जाई। तुसी किसी अणजाण बंदे दे हाथ विच चाटी फड़ा दो, उहदे विच दुध पा दिओ, दही पा दिओ, ते उहनूं आखो रिड़क रिड़क, उह की करेगा भला? इदां जोर जोर दी मार के चाटी भन सुट्टी सारी। सो धर्म ये चीज थोड़ा होंदा, साडा ते मार्ग ही सहज दा है, टिका दा है, इत्थे कोई है नहीं इदां दी चीज। इहदे बना लईआं नवीआं नवीआं चीजां बना के असैंबल करके तुहाडे अगे रखी जांदे ने, आपां उदों मन्नी जांदे उहनां नूं, इत्थे जोर लाउण दी लोड़ कोई नहीं, बड़े सहज विच रहो। अच्छा, ये जिन्ने तुहाडा जोर लवाउण वाले ने ना, ये आप कदी नहीं जोर लाउंदे। जिन्ने तुहाडा जोर लवाउण वाले ने ना, ये आप नहीं कदी जोर लाउंदे। इन्हां तो गलत यह है भी गुरु साहब की बाणी नूं मैं समझा विचारा, तो जिहड़ा बचन है उहनूं जीवन दे विच धारण करा। तो महाराज ने जिहड़ी मैं इस्लाम की उदाहरण देण लगा सी, उन्होंने आख्या भी 30 दिन जदों रोज़ियां दे आउंदे ना, ते वह भुखा रह लैंदा, ऐन पूरा जोर ला लैंदा, इहदे नालों तू घट खाया कर, वैसे ही तो असी अति कराउंदे आ। साडा जिहड़ा वैसे साडा कल्चर है ना, जिहड़ा ह्यूमन नेचर है, ये अति वाले बन्ने ज्यादा, जां ते बिल्कुल छड्ड देवेगा ते जां बिल्कुल ज्यादा खावेगा, विचला ऑप्शन अपने कोल नहीं हुंदा। तुसी कदी वेख्यो जिहड़े मेरे वर्गे ज्यादा खाण वाले ने ना, उन्हां नूं कोई उन्हां नूं कोई घट खाया कर, वो पता की आखणगे, कहिंदे कोई नहीं हुण मैं महीना क छड्ड ही देना, हुण मैं फास्टिंग कर लैनी महीना क, जां ते असीं बिल्कुल छड्ड देंगे, साडे बिहेवियर साडा सुभाअ इदां दा, चीज़ नूं जां बिल्कुल डिनाई कर दिता असीं भी मैं हुण खाणी नहीं, ते फिर हुंदा भी इदां, बंदा 10-10 दिन खांदा ही नहीं। उहनूं पुछो की कर, कहिंदा मैं फास्टिंग ते हाँ, मैनूं 10 दिन हो गए मैं रोटी नहीं खाधी, जां ते बिल्कुल उधर नूं तुर पिया, ते जां फिर इन्ना क खादा, बैलेंस ते है ही नहीं ना लाइफ दे विच। मैं अपनी गल भी नाल कर रहा, तुहाडी नहीं कर रहा। तो असी अति वाले बन्ने, जां बिल्कुल भुखे ते जां बिल्कुल रज्जे, विचला ना नहीं साडे कोल। गुरु ने तुहानूं सेंटर दिता विचलारा, इत्थे अति की लोड़ नहीं हैगी किसी चीज़ की भी। मैं जे बाणी पढ़न वेखा अज मैं 50 पाठ कर देने, नहीं नहीं लोड़ नहीं हैगी, एक ही कर ला, कोई गल नहीं, समझ उन्हों विचार, 5 पौड़ियां पढ़ ला विचार, उन्हों गुरबाणी दे मैसेज नूं, जो सतगुरु की बाणी ने मैसेज दिता उन्हों जीवन दे विच कमा। तेरे जीवन च जिहड़ी जिहड़ी जिहड़ा बदलाव आना ना, उन्हें तेनू सवारना, इदां नहीं होना। पाठ करन वाले इत्थे बाबे ने आखिया पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, किन्ना जोर साडा लवाया जांदा। असल विच की हुंदा है वी जिहड़ी फ्रस्ट्रेशन हुंदी है साडी, जिहड़ी उह इक बणिया हुंदा ना, इदां कह लो भी बंदा भरिया हुंदा, उहनूं रिलीज़ कर दिता जांदा एक दिन विच जाके। तो गल इह नहीं है, गुरमत दा मार्ग, सिखी दा मार्ग बिल्कुल ही बाकी सारियां चीज़ां तो उल्ट है। तो तुसीं अज साडे सारियां दे करम वेख लो भी ये फर्क इन्ना कि तुहानूं लगेगा, जे तुसीं कितें नीझ नाल कितें बह के सोचियो इस गल नूं, विचारियो भी की फर्क है एक गुरुद्वारे ते मंदर दे विच। मंदर च एक मूर्ति है, साढ़े कोल गुरु ग्रंथ साहब है, लोग मूर्ति नूं मत्था टेक के मुड़दे ने, असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेक के मुड़दे हाँ, वह मंत्रां दे जाप करी जांदे ने, असीं शब्दां दे जाप करी जांदे हाँ। अंडरस्टैंडिंग दी साढ़े अंदर घाट है, समझ दी घाट है। तो वह जदों कोई साढ़े वर्ग इदां करदा, वह कहिंदे लै जी फिर कोई माड़ा काम थोड़ा करदे, बाणी पढ़दे ने, कि कम यह समझो माड़े जां चंगे दी गल नहीं हुंदी, गल समझ दी भी तां हुंदी कि नहीं। कि जे समझ वाला पद्धर तुहाडा बिल्कुल ही जीरो उत्ते पहुंचिया होया है, काम माड़ा की होगा। हुण तुसीं कोई सेवा करी जाओ, इदां आपां इहनूं हुण हो सकदा तुहानूं इस एग्जाम्पल नाल गल समझ लगे जो मैं कहना चाहुंदा। तुसीं सेवा करी जाओ, सेवा करी जाओ, सेवा करनी तां कोई माड़ा काम नहीं हुंदी, पर कोई तुहानूं बंदा आण के कहे भी इहनां 'च तूं सेवा कर रहा, इह इत्थों लंगर लै जांदे ने उत्थे जा के सुटाउंदे ने, इत्थों लंगर लै जांदे ने उत्थे जा के सुटाउंदे ने। हुण उस गल नूं ते तुसीं अंडरस्टैंड ना करो, तो तुसीं कहो भी लो जी सेवा ही कर दे, कोई माड़ा काम कर दे ते सेवा करन तों डकदा, सेवा करन तों नहीं डक रहा। गल विवेक नाल समझण दी है, गल विवेक नाल विचारन दी है। तो महाराज ने आखिया पढ़िया ना ही भेद बुझे पावना, कला पढ़न नाल नहीं गल नूं बुझना भी पैना। गुरा एक दे बुझाई, बुझाई का मतलब की समझना।

चरण जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सहाय तान हमारा मीत रहाओ। मान बिलास पे साहिब के अचरज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। मान बिलास पे साहिब के अचरज देख बड़ाई

सब खेल तमाशा तेरी वडियाई। आपे वे करे सब साचा, आपे भन कड़ा हेंदा, बाजी घर एक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिपत रहे गुर शब्दी, साचे से चितला हेंदा, बाजे बाजे तुन अकारा, आव जाए वजामन हारा, कट कट पौन वहे एक रंगी, मिल पवने सब वजाए हेंदा, करता करे सोने चो होवै, गुर कै शब्द हमें तो खोवै, गुर प्रसादी किसे देवड़े आई, नामो नाम ते आहिंदा, गुर सेवे जेवड़ धोला हा नाही, नाम मन वसे नामो सलाही, नामो नाम सदा सोदाता, नामो लाहा पाहिंदा, बिन नामे सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावे वदे बकारा, नाम न सेवै क्यों सुख पाई, बिन नामे दुख पाहिंदा, आप करे तह आप कराए, गुर प्रसादी कहे बजाए, गुरमोहे सो बंधन तोड़े, मोती के घर पाहिंदा, गणत गणे सो जले संसारा, सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमोहे सो गणत सिखाए, सचे सच समाहिंदा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पावेंदा, जाप ताप संयम नाम प्यारा, केलवे काटे काटन हारा, हर कै नाम तन मन शीतल हुआ, सहजे सा समाएंदा, अंतर लोभ मन मैले मल्लाए, मैले कर्म करे दो पाए, कूड़ो कूड़ करे वपाड़ा, कूड़ बोल दो पावेंदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर के भाणे चले दिन राती, नाम चेत सो पावेंदा, आप सरंदा सच्चा सोई, आप पाए कपाए सोई, गुरमो होवे सो सदा सलाहे, मैं सच सो पावेंदा, अनेक जतन करे इंद्री बस न होई, अनेक जतन करे इंद्री वास न होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुर सेवे मन वस आवे, मन मारे मने समाहिंदा, मेरा तेरा तुद आपे किया, सब तेरे जंत तेरे सब जिया, नानक नाम समाल सदा तू, गुरमति मन वसाहिंदा, मारो मल्ला तीजा, हर जो दाता अगम अथाह, ओ तिल न तमाए वे परवाह, तेनो अपन न सके कोई, आपे मेल मलाहिंदा, जो करे सो नेचो होई, तिस बिन दाता अवर न कोई, जेनो नाम दान दे करे सो पाए, गुर शब्दी मलाहिंदा, चौदह पवन तेरे हट नाले, सतगुर दिखाए अंतर नाले, नामे का वपारी होवे, गुर शब्दी को पावेंदा, सतगुर सेवे सहज आनंदा, हिरदे आए उठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराहिंदा, सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया, आंदन मारिए दुख सुबाया, मथे काले मैल न पावे, दोखी वे दो पावेंदा, सतगुर सेवे से वड पागी, सहज पाए सची लिव लागी, सचो सच कमावे साधी, सचे मेल मलाहिंदा, जेनो सच्चा दे सो पाए, अंतर साज परम चकाए, सा सचे का आपे दाता, जे देवे सो सच पावेंदा, आपे करता सबना का सोई, जेनो आप बजाए बूझे कोई, आपे बख्शे दे वड़ियाई, आपे मेल मलाहिंदा, होमे करद्या जन्म गवाया, आगे मोह न चुके माया, अगे जमका लेखा लेवे, जो तिल कहानी पीणा हिंदा, पूरे पागुर सेवा होई, नद करे ता सेवे कोई, जमकाल ते नेड़ न आवे, मैं सचे सो पावे हिंदा, तिन सो पाया जो तुद पाए, पूरे पाग गुर सेवा लाए, तेरे हाथ सबड़े आई,

0: नानक दिन करते कारण किया सो जान करतार पौड़ी।
1: बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया, सतगुरु विच आव रखे उन कर प्रगटिया सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विच मुचका, आत्मे विचार है जिन सच्चे सोजत।

0: मुखंतर पाए पौड़ी।
1: सदगुरु वारे तिम लिख संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्नी नेत्री जग निहालिया। कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रिया, सतगुरु है बोथा विलेकने उचारिया, कर कृपा पार उतारिया, कर कृपा पार।

जूठा मुख वसै नित नित हुई खुआर। सूचे एह न आखी है बहन जे पिंडा धोई, सूचे से नानका जिन मन वसया सोई। पौड़ी तुरे पराने पौन वे।

0: पूरे हनुमंत नान गुरु चरण लागे हतु पूरे।
1: वाहे गुरु जी का खालसा,
0: वाहे गुरु
1: फतेह।

ज्यों उद्यान कुसम प्रफुल्लत किने ना कराउ लयो, तैसे प्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो।

सागुरु तरन को, मैं सतगुर ओट लयो। जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु बाणी के बोहित अमृत के दाते दसा पातशाहियां दी जोत साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तो ही सजे दवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है। आप सब गुरदेव की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के मेरे तो पहला गुरु घर के रागी सिंघां पासों सतगुरु की अमृतमई बाणी दे रस पिने कीर्तन सरवण कर रहे सी। तो आओ सात संगत समा है लड़ीवार चल रही गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी की कथा विचार दा विचारां नूं रमण तो पहला दर घर की मर्यादा नूं मुख रखदियां फतेह की सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब नवाज महाराज की पावन बाणी का कीर्तन मेरे तो पहला गुरु घर का बड़ा सत्कारत जत्था आप जी नूं सरवण करा रहा सी। अखीरले जिहड़े बचन वह शब्द के रूप में गा के गए ने मल्हार राग विच गुरु नानक साहब का वह शब्द है। बड़िया प्यारियां तुकां पढ़ रहे सन बागे कापड़ बोलें बैण लम्मा नक काले तेरे नैण कबहूं साहिब देखिया भैण। इहदा अर्थ यह है भी जिवें जिहड़ी कूंज है वो चिट्टे खंभां वाली हुंदी है बड़ी सोहणी लगदी है ते बहुत सोहणे बोल बोलदी है। तो महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भी कहिंदे ने हे जीव इस्त्री हे मनुख तू भी बड़ा प्यारा है तेरी बोली भी बड़ी मिठी है लम्मा नक काले तेरे नैण तेरे नैन नक्श भी सोहने ने नक भी बड़ा सुंदर है कबूं साहिब देखिया भैण आख्या जिन्हें ये दातां दित्तियां ने तेनू कदी उन्हूं भी वेख्या ही जिन्हें तेनू यह शरीर दिता है कदी उन्हूं भी जाणिया ही जिन्हें इन्ना समर्थ बनाया भी उड़ा उड़ चढ़ा असमान उड़दा है इन्नी समर्था वाला है तू भजा फिरदा है साहिब समर्थ तेरा तान जेड़ा तेरा तान है जेड़ा आसरा है जिहदी ताकत काम कर रही है कदी उहदे बारे भी जाणिया है कि नहीं जाणिया। तो सुंदर शब्द गुरु घर का रागी जथा आप जी नूं सरवण करा के गया। वैसे तो सारी बाणी सुंदर है तो कुछ शब्द जेडे ने वह बड़े सीधे रूप में जो सतगुरु सानू उदाहरण दे के समझाते हैं तो बड़े टुंबदे ने। तो अज जे शब्द का पाठ मैं आप जी दे नाल सांझा कीता है राग गौड़ी विच ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंक 336 दे उत्ते सुभायमान है। भगत कबीर साहब ने पावन शब्द की जिहड़ी रहाऊ वाली पंक्ति उहदे विच आखे भगत बिन बिरथे जन्म गयो भगती तो बिना हे मनुख जिहड़ा तेनू जन्म मिलिया है वह व्यर्थ जा रहा है बिरथा जा रहा है। इत्थे भगत शब्द वरत्या है भगत का अर्थ है भगती। मैं अक्सर क्योंकि आपां जदों इहो जिहे शब्द पढ़दे हां ते इस गल नूं नाल नाल विचारदे रहिंदे आ भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ियां सिहारियां बिहारियां लगियां ने इहदा कोई मीनिंग है इहदा कोई मतलब है यह ग्रामर है गुरु ग्रंथ साहब की।
ਹੁਣ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਭਗਤ। ਉਚਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਤੋ ਉਹ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਭਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ,

0: सुरत दे उत्ते शैतान लोको चढ़िया सुरत दे उत्ते शैतान लोको
1: फिरत जवान सब पकड़ लीते।